दीपक दीपा कासरा गुरु द्वारे हुक्मी बंदा पट्टी अंदर चौधरी ढिलों लाल लंगा सुहंदा दीपक दीपा कासरा गुरु द्वारे हुक्मी बंदा पट्टी अंदर चौधरी ढिलों लाल लंगा सुहंदा अजब अजायब संगया उमर शाह गुर सेव करंदा पैड़ा छाजल जानी है कंदू संगर मिले हसंदा पुत सपुत कपूर देओ

आवै, चित आमन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिबा, तहाँ तहाँ रछियारी आयत। देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रह दान, बबीक दान, विसाहा दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियाँ चंडे मुंगे, जुगों जुगे अटल धर्म का जयकार। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। वाहिगुरु सिखा दा मन्नी वा, मात उची मात पादा राखा। वाहिगुरु ही नमाणिया दे माण, नेताणिया दे तान, नेवटिया दे ओट। गुरु गरीब नवास सतगुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी ने पार कृपा की, आप जी की पावन हजूरी विखे संध्या दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना। पावन बाणी दे शब्द कीर्तन गुरमत विचारा हुई, ढाडी सिंघा ने इतिहास बयान किया। छे पौड़ियां सब जी दे गायन हुए, समुची सेवा नभाउंदिया सतगुरु जी अखर वादा काटा परचक माफ करना। पढ़ी सुनी बाणी का भाव दाराइया संगतां दे हिरदिआं ते वसावना। सब का तिल फुल भेटा दर प्रवान करना, सरबदे कारज रास करने, घर परिवार मुखी सुख शांति प्रदान करनी। बच्चियां नूं गुरमां दी सूझी उच्च विद्या दे दान बख्शने, खालसे पंथ दी सदा चढ़दी कला रखनी। काका गुरनाथ सिंह दे जन्म दिन दी खुशी दे अंदर अरदास बेनती, सच्चे पातशाह जी बच्चे दे सिर ते मेहर प्रयास रखना। वड्डियां वड्डियां उमरां बख्शनियां, बच्चा माता पिता दा आग्याकार होवे, देश कौम दा प्यार बख्शना, दरों घरों सीसां बख्शनियां। इस वेले दीवान दी समाप्ति दी अरदास, अखर वादा काटा परचक माफ करना। आईया संगतां नूं नवाज दे होए, मुख वा बख्श के कृतार्थ करो जी। सही प्यारे मेरे जिन्ना मिलिया, तेरा नाम चेत आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबंध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भई अकाल की, तब चलायो पंथ सब से।

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मह भया प्रगास, जिनकी आसो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया।

नमो मान माने नमो रोग रोग नमो स्पन्न स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता उदूरदर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्ता सतामं तेरा जोरचा चरीशन जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निधान्य नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राय राय नमो साजसाज नमो साजसाज नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजिन समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चारपट शांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म अला कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं भोक्ता सर्वं जोक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं।

त्रिबाद्य गंध्य गाद्य स्पंग सर्व भाग्य सो सर्वानुरागे त्रिपुर स्वरूप अशुत किन्नर कम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है रुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोक्तानूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह अनुक्त स्वरूप है प्रजोक्तानूप है चाचरी शानदार

अभगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटह है, अगह है, असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, आजाद है, चर प्रशंत व प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राण, सर्वंत्राण, सर्वंकर्म, सर्वंकर्म, सर्वंयुक्ता, सर्वंमुक्ता, सर्वशंत व प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकाम्य निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न शत्र न मित्र न जाते न पाते न ताते न माते अमितो न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है आजाय है आजा है भगवती शांत व प्रसाद। कि जा हर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन अल चिराग है कि कामल करीम है कि राज कलीम है कि रोजी देहंद है कि राज करेहंद है करीमुल कमाल है कि जो हुसन अल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवास है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्थुल निवास है कि सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीज

0: सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता।
1: श्री असु जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल मन वांछत फल पावै सोई दुख न तसै व्याप्त कोई अड़िल।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपुंगुर प्रसाद सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत आया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज से तीमन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावनो आइयां

हर रूप नजर आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिनियवर न कोई। कह नानक वे नेत्रे अंध से सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट हो। ए श्रवण हो मेरे हो सच सुनने नू पठाए, सच सुनने नू पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस समाणी।

संत साजन भए सरसे, पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे।

नील वस्त्र पैर हुए प्रवान, मलेश धाले पूजी प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौकी उपर किसे ना जाना। देख के चौंका कड्डी कार, उपरा बैठे कुड़ियार। मत पिटे वे।

0: गए मसकत काल नानक
1: ते मुख उजले केती छुट्टी
0: नाल
1: वाहिगुरु का खालसा
0: वाहिगुरु की फतेह।

सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गालवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोव असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन इह लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिब तिब पाहे जेता कीता तेता नाओ बिन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतरस खेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईऐ ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाह आपे बीज आपे ही खाह नानक हुक्मी आवह जाह तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुती माह कवन जित होआ आकार वेल ना पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहा ना कोई जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखै एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखै होए विनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सा लाही सा लाहे एती सुरत ना पाइया नदियां अतै वाहा पवहै समुंद ना जानी है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुलना होवणी जे तिस मन हो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करना देन ना अंत अंत न वेखन सुन ना अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एह अंत न जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहेब ऊचा थाओ ऊचे ऊपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जो द पार केत्या गणत नहीं विचार केते खप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूरख खाही खाहे केत्या दुख भूख सद मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखण पाए ओह जाने जे तिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के ई के जिसनो बख्शे सिफत सा लाह नानक पात साही पात साह अमोल गुण अमोल वापार अमोल वापारिये अमोल पंडार अमोल आवह अमोल लै जाहे अमोल पाए अमोला समाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल परवान अमोल बख्शीस अमोल निशान
अमोल कर्म अमोल फरमान, अमोलो अमोल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करे वख्यान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईसर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करेहे, ता आख न सकै के ई के, जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाणै साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिया सिर गावारां गावार, सो दर केहा सो कर केहा, जितबह सर्ब समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे, केते राग परी स्यों कहियन, केते गावन हारे, गावह तूनों पौन पाणी बैसंतर, गावह राजा धर्म दुआरे, गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईसर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नरखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच पयाले, गावन रतनों पाए तेरे, अड़सठ तीरथ नाले, गावह जोध महाबल सूरा, गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनों गावह जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन, से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती, कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता आपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुकम ना करना जाई, सो पात साह साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पद चोली, ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वज है नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, हृद सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोए कार चलावह, लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश, आद नील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान, ओह वेखै उन्ना नदर ना आवै, बहुता एहो विडान, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, आसन लोए लोए पंडार, जो किश पाया सो एकावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी भौ लख हो है, लख हो वह लख वीस, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीस, एत राहा पत पवड़िया, चढ़िए होए इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देन न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार,
ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਖੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁੰਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨਮੈ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਹ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਐਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿੱਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉਂ ਕਹੀਐ ਹੈ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮੱਚ ਪਏ ਆਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਨਰਜਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ
ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ, ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਖਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੋ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿੜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ
तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहे सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै कर तेके जी जो सब सह का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणै जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ै पईले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तैं डूबिया लै मन एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सतीनी पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कित ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म ब्रिथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा सरण परे की रख हो शर्मा सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का होए बीचारो तित कर गावो सोहिला सिवरे हो सिरजन हारो तुम गावो मेरे निर्भौ का सोहिला हों वारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़ै संभालियन देखेगा देवनहार तेरा दाने कीमत ना पवै तिसदा ते कमन सवार सम्मत साहा लिखिया मिल कर पाव तेल देहो सज्जन आसीसड़िया जो होवै साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छह घर छह गुर छह उपदेस गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वड़ाई तोए रहाओ विस्वे चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहदा शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोए कहो सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंधे विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदै चानण सब मह चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो आनंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंको होए जाते तेरै नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे
पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यों ज्यों चलह चुबह दुख पावह जम काल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलहो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरै नारे मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आवै एह रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पावहु सुख सहजे बहर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसरै रतनी ता होहे जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगन चंदन अगर चंदन लीप आवै चाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवै नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवै नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवै नाओ सुल्तान होवा मेल लस्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवै नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पवन पीयन अप्याओ चंद सूरज दोए गुफै ना देखै सुपनै सौण न थाओ भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा नाओ साचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखणा जे भावै करे तमाए रहाओ गुस्सा कटिया वार वार पीसण पीसा पाए अग्गी सेती जालिया भसम सेती रल जाओ भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा नाओ पंखी होए कै जे पवा सह असमानी जाओ नदरी किसे ना आवो ना किछ पिया ना खाओ भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा नाओ नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ की चै पाओ मसू तोट ना आवई लेखण पौन चलाओ भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा नाओ श्री राग महला पहला लेखै बोलण बोलना लेखै खाना खाओ लेखै वाट चलाइया लेखै सुन वे खाओ लेखै साह लवाई है पढ़े के पुछण जाओ बाबा माया रचना तो अंधै नाम विसारिया ना तिस एह ना ओहो रहाओ जीवन मरना जाए कै इथै खाजै काल जिथै बह समझाइयै तिथै कोय ना चलियो नाल रोवण वाले जेतड़े रोवण वाले जेतड़े सब बन्नै पंड पराल सब को आखै बहुत बहुत बहुत बहुत घट ना आखै कोय कीमत किने न पाईया कहन ना वड्डा होए साचा साहिब एक तू होर जियां के ते लो नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिन कै संग साथ वड्या स्यों क्या रीस जिथै नीच संभालियन तिथै नदर तेरी बख्शीस श्री राग महला पहला लब कुत्ता कूड़ चूहड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा पर मल मुख सुधि अगन क्रोध चंडाल रस कस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार बाबा बोलिए पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच कर्म बह रोए रहाओ
रास सोयना रास रूपा कामण रास परमल की वास रास

दिमो कत्तक हो बे साध संग बिनसे सबे सो मगर माहे सुहंदियां हर प्रसंग बैठड़ियां तिनकी सोभा क्या गणी जे साहेब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहेलड़ियां साजना ते बाहरी से रहने अकेलड़ियां ते दुख न कबू उतरे से जम के बस पड़ियां जिनी राव्या प्रभ आपना से दिसन नित खड़ियां रतन जवेहल लाल हार कंठ तिना जड़ियां नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़ियां मगर प्रभ आराधना बौड़ न जन्मड़ियां।

उद्धव से एक राय प्रभ मिल साधु गुण गाव दूजी जाय न सूजी किथे कूकण जा अज्ञान बनासन तम हरण